0: wisdom and courage in standing up. Daro mat, let's get rid of this regime that is attacking India, destroying our constitution, capturing all our institutions.
1: So would it be wrong to say that the Gen Z did what the opposition couldn't do?
2: No, see, I always said, when I say that I am a member of parliament from the opposition, but I used to be part of this. And I can tell you one, see, when such a majoritarian government is ruling this country, you need to have a larger alliance of the people. It can be an NGO, civil society group, it can be an opposition party, it can be somebody working with the Dalits, marginalized. So on a serious note, I can tell you one thing, no great agitations have succeeded as being fought by one party or two-party opposition.
1: You know, the Prime Minister has begun making reels where he's addressing the audience directly. What do you have to say on that?
2: Prime Minister was more keen on Insta reels, number of followers. And he thought that having enhanced number of followers on Insta can resolve the issue.
3: पड़ोसी के घर में अगर बच्चा हो और कांग्रेस अगर ढोलक बजाए तो अब उनका क्या भूमिका थी उसमें? बच्चों ने आंदोलन किया, वो जाके उसके पीछे खड़े हो गए, क्योंकि बंगाल चुनाव के बाद विपक्ष बिल्कुल निराश हो गया और उस निराशा के पल में उनको एक आशा की किरण काकरोच जनता पार्टी में दिखी और उनके पीछे जाके खड़े हो गए। उसमें क्या भूमिका थी उनकी, क्या भूमिका थी बताइए मुझे विपक्ष की? सिर्फ कैटालिसिस की थी कि हाँ आगे बढ़ो, तुम लटकाओ, हम तुम्हारे पीछे हैं। कोई एक आध कांग्रेस ने लटकाया खाया क्या किसी ने? और अब जश्न मना रहे
4: द स्टूडेंट रेवोल्यूशन एडेड विथ कॉकरोच पार्टी रेवोल्यूशन हैव थ्रेटन्ड नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट एज दे आर अफ्रेड ऑफ द फ्यूचर डेवलपमेंट्स दे हैव सरेंडर्ड मिस्टर प्रधान हैज सबमिटेड हिज रेजिग्नेशन. It is a slap on the face of Narendra Modi.
5: आपका जाने से पहले धर्मेंद्र प्रधान
6: डर गया ना, जो डर गया वो मर गया.
0: This is a warning to them. This is a warning from the students of India. This is a warning from the opposition that you cannot run India the way you have been running. This is not your personal fiefdom. This is not something that belongs to you. This belongs to the people of India. This belongs to the constitution of India. This, all these institutions, they do not belong to you. And if you carry on down this path, you will see that what has happened right now will be at 10 times the scale.
7: ये जो इस्तीफा हुआ है वो इंकलाब की वजह से हुआ है. जिस तरह इंकलाब दिखाई दिया सड़कों पर, प्रयागराज रहा हो या BHU रहा हो या अन्य जगह जो छात्र नौजवान तैयारी कर रहे थे लखनऊ राजधानी में, अभी भी हुआ प्रदर्शन, लेकिन इसके बाद की जो तैयारी थी, तो इस्तीफा तो हुआ है लेकिन इंकलाब की वजह से इस्तीफा हुआ, जो सड़कों पे इंकलाब था.
8: I'm very very happy for many reasons, but the main reason is that I believe today, the 25th of July 2026, is the day that the people of our country have started claiming their country back from those who have tried to destroy the constitution, from those who have tried everything to oppress and suppress the voice of our people.
9: इस गवर्नमेंट को तोड़ने में जहां बड़ी बड़ी अपोजिशन पार्टियां नाकाम रही, वहां पे देश की जेंजी ने, देश की युवा पीढ़ी ने, ये 17 साल 16 साल 18 साल के बच्चों ने देश की इतनी मजबूत और अहंकारी सरकार को झुका दिया. और इनके बहुत गद्दावर मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिसके पीछे कहा जा रहा था पूरी की पूरी सरकार इनके पीछे खड़ी है, उनको अंततः इस्तीफा देना पड़ गया. ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है.
1: Well, my colleague Tanushka joins us on the broadcast. Tanushka, after the resignation of the minister, we're seeing politics erupt with multiple politicians now jumping into the fray. Walk our viewers through what exactly is happening on the political front.
10: Precisely, Reet, we've been given to understand, as we just heard in all of these bites as well, that the opposition leaders especially have given out in terms of the resignation of the Dharmendra Pradhan. So we also heard Rahul Gandhi, the leader of opposition, say that, you know, let's change this regime. We've also had the MDMK chief Vaiko

0: गांव के इकट्ठे हुए मिले, हाँ भाई वैक्यूम से ही दो रहे हैं। तो फिर हम 10-1 गाड़ी लेके दिल्ली गए थे पार्थिव शरीर लेने के लिए। अगले दिन मुझे शरीर पार्थिव शरीर मिला, फिर हमें अपने गांव देह संस्कार किया। तो पूरे सम्मान समारोह से रोहतक से DC SP सभी आए थे। तो यही था हमारा।
1: और पिताजी के बारे में क्या आप कुछ कह सकते हैं, क्या यादें हैं? और यहाँ पर जब वो कारगिल में थे तो कितना समय उन्होंने यहाँ पर बिताया?
0: सर ये तो हमें ध्यान नहीं, लेकिन उनकी पोस्टिंग यही थी फिलहाल। ये छुट्टी से आने से पहले यहीं से छुट्टी गए थे और यहीं आ गए थे लड़ाई शुरू होने से पहले। वो मेरे को बोल के भी आए थे हम जल्दी आएंगे। तो ये इनका शरीर पूरा हो गया, आप लड़ाई में नहीं आ पाए घर पे, हमारे इतना ही ध्यान है जी।
1: तो आप पहले भी कारगिल आए या पहली बार आ रहे हैं?
0: नहीं, हम पहली बार आए हैं, आज पहली बार आए सर।
1: तो यहाँ आके आपको कैसा महसूस हो रहा है? और दूसरा मैं आपको ये पूछूं कि देश, आप देश को क्या कहेंगे कि वो आपके पिताजी को कैसे याद रखें?
0: सर हमें तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पर, और हम तो देश के शहीदों को याद रखते रहे हमें। सर हमें हर बार हमें बुलाए, हम आए, हमारे को बहुत अच्छा लगा यहाँ आने के बाद में। जय भारत माता की जय।
1: धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो एक परिवार ऐसा भी जो पहली बार कारगिल आया 27 साल के बाद, लेकिन दिल में वही एक कामना है, एक सलाम है देश के नाम और इनके स्वर्गीय पिताजी के नाम, जिन्होंने देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी।

0: On the 27th, Kargil Vijay Diwas, the nation is remembering the courage, the sacrifice of the soldiers who secured India's victory in the Kargil War back in 1999. Today, the Defence Minister Rajnath Singh paid that floral tribute at the Kargil War Memorial, honouring the brave hearts who laid down their lives in the line of duty. Prime Minister Modi also saluted the heroes of Kargil, saying that the nation bows to their unmatched courage and their valour, and that will continue to inspire generations to come. Across the country, tributes are pouring in as India is remembering one of its most defining military victories. And here is what the Defence Minister had to say.
1: आज से ठीक 27 वर्ष पहले 1999 की जुलाई में हमारी मातृभूमि पर कायरतापूर्ण और कुटिल हमला हुआ था। पाकिस्तान ने अपनी सेना के घुसपैठियों के माध्यम से छल बल और धोखे का सहारा लेते हुए हमारी चोटियों पर कब्जा कर लिया था। ये वो चोटियां थीं जो सर्दियों में खाली रहती थीं, और दुश्मन ने उसी संधिकाल का फायदा उठाया। लेकिन दुश्मन हमारी सेना के शौर्य और संकल्प की ऊंचाई को भांपने में चूक गया। हमारे जवानों ने सिर्फ पहाड़ की ऊंचाइयों को ही नहीं, बल्कि मानवीय सीमाओं की हर परिभाषा को भी पार करके दिखाया सारी दुनिया को। कारगिल युद्ध केवल भारत की सैन्य और कूटनीतिक विजय नहीं थी मित्रों, वह एक ऐसा क्षण था जब पूरी दुनिया ने भारतीय सैनिकों का अदम्य साहस देखा, उनका शौर्य देखा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है, क्या पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
0: The defense minister saying that the defense forces are completely ready, they stand fully prepared to face any kind of challenges. With that, it's a wrap on this bulletin. News and updates will continue on the other side.

0: front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
1: So many attacks.
0: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
1: It's incredible.
0: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
1: Welcome to Left, Right, and Center.
0: Hard facts.
2: War struck country.
0: Hard questions.
2: In the Ukraine.
0: 30 years of trust.
3: In the Kargil area.
1: North Ukraine.
2: In France. In Italy.
1: At Srinagar.
2: INS Vikrant.
1: Vishnu Shom for NDTV.
0: Vishnu Shom. Only on NDTV.
4: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
5: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। अभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन

0: बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़ें। vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।
1: लॉन्च कंट्रोल।

मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। हमारे जीवन में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें याद रखने के लिए कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आज 26 जुलाई ऐसी ही एक तारीख है। आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता, बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुंचाता है। इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय

यात्रा निकाली गई है। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई यह मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका संदेश है वन राइड वन नेशन वन सैल्यूट। यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। साथियों, आज भारत अपने सैनिकों के साहस के साथ साथ अपनी तकनीकी क्षमता को भी लगातार मजबूत कर रहा है। कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में INS महेंद्रगिरी शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है। 2-3 दिन पूर्व ही DRDO ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। साथियों, आज रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है। आइए इस करगिल विजय दिवस पर हम अपने अमर शहीदों को नमन करें और एक सुरक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का अपना संकल्प और मजबूत करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कैच द रेन अभियान की चर्चा की थी। मैंने आग्रह किया था कि बारिश की हर बूंद को सहजने के इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं। कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है। जहां बारिश गिरे, जब बारिश गिरे, पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही है। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। कहीं पुराने तालाबों से गाद निकाली जा रही है, कहीं कुआं और बावड़ियों को फिर से जीवन दिया जा रहा है, बंद पड़े बोरवेल अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करीब 1500 तालाब बनाए गए हैं। नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित हुई है। आंध्र प्रदेश के नंदियाल में सभी ग्राम पंचायतें इस अभियान से जुड़ी हैं और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया है। हमारे शहर भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, उड़ीसा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। आइए हम भी अपने आसपास किसी एक तालाब, कुएं या बावड़ी की जिम्मेदारी लें, पानी की हर बूंद बचाएं। आज बचाई गई हर बूंद आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिन पहले ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए हैं। हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीतें। साथियों, हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। PV सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता।
लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच था। 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहां देश का नाम रोशन किया है। साथियों, कुछ छोटे प्रयास ऐसे भी होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं। मुझे केरलम में एर्नाकुलम के साउथ चितूर में स्पोर्ट्स के ऐसे ही एक प्रयास के बारे में पता चला है। वहां के एक स्कूल में संस्कृत क्लब है। यहाँ के टीचर अभिलाष जी बड़े अनूठे तरीके से संस्कृत को लोकप्रिय बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को अक्षर कंदुक नाम दिया गया है। इसमें संस्कृत के अक्षरों को फुटबॉल में इस्तेमाल होने वाले शब्दों से जोड़कर आसान तरीके से समझाया जाता है। इसे सीखने में आनंद मिलता है, साथ ही खेलों से लोगों का जुड़ाव भी बढ़ता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले रविवार विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है। साथियों, हमारे युवा साथी साइंस में भी भारत का मस्तक ऊंचा कर रहे हैं। साइंस ओलंपियड्स दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कंपटीशन में से एक है। इनमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं। इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड हुए। इन कॉम्पिटिशन्स में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा। फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की। पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के स्टूडेंट्स ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीता है। केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता। यह अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने मेडल जीते। इनमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है। वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए। मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है। यह देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड्स और हैकेथॉन्स का कल्चर निरंतर बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि देश के अधिक से अधिक युवा ऐसे फोरम्स में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे और भारत का परचम भी लहराएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हुनर भी हो और कुछ करने का जज्बा भी हो तो हर राह आसान हो जाती है। कश्मीर की पारंपरिक चटाई वगू को लेकर आज जो प्रयास हो रहे हैं उसमें इसी की झलक मिलती है। इसे सरकंडे और धान के पुआल से स्ट्रॉ से तैयार किया जाता है। इस चटाई को बनाने की परंपरा बरसों पुरानी है। इसके लिए सबसे पहले कश्मीर के दलदली इलाकों की घास और सरकंडे की कटाई की जाती है। धूप में सुखाने के बाद छटाई होती है और फिर शुरू होता है हाथों से बुनाई का काम। 2 कारीगरों को एक चटाई बनाने में करीब करीब 4 दिन लगते हैं। यह चटाई अनूठी भी है और इको फ्रेंडली भी है। एक बड़ी खासियत यह है कि आपको गर्मियों में इससे ठंडक मिलेगी और सर्दियों में गर्माहट। पहले यह कश्मीर के हर घर में दिखती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसका उपयोग कम होने लगा था। ऐसे में श्रीनगर के गुलाम हुसैन जी और उनकी बेटी तंजिला जी ने एक संकल्प लिया। दोनों वगू क्राफ्ट की परंपरा को एक नया जीवन देने में जुट गए।
गुलाम हुसैन जी बहुत ही साधारण

अन्य परिवार से आते हैं। उन्होंने इस काम में कई तरह की चुनौतियां भी आई, लेकिन वगू के संरक्षण का उनका संकल्प अडिग था। देखते ही देखते उनके इस प्रयास से बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए। गुलाम हुसैन जी ने इस कौशल को खूब बढ़ाया। अपने मिशन में उन्हें स्थानीय स्तर पर सरकारी सहयोग भी मिला। आज तेजी से लोकप्रिय हो रहा वगू देश के अन्य हिस्सों में भी पहुंच रहा है। मुझे इस प्रयास से जुड़े सभी लोगों पर बहुत गर्व है। आज हम सभी का लोकल प्रोडक्ट्स पर जोर है, हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चल रहे हैं। ऐसे में कश्मीर का वगू भी आपके घर का हिस्सा बने, इस पर एक बार जरूर सोचिएगा। साथियों, हमारे देश में चाय सिर्फ एक पेय नहीं है, ये अपनापन भी है। सुबह की शुरुआत हो, दोस्तों की मुलाकात हो, या परिवार के साथ कुछ पल बिताने हो, चाय हर मौके का हिस्सा बन जाती है। वैसे तो आप भी भलीभांति जानते हैं मेरा चाय से रिश्ता क्या है, लेकिन आज मैं जिस चाय की चर्चा कर रहा हूं उसने सिर्फ स्वाद ही नहीं दिया, बल्कि अनेक बहनों के जीवन में आत्मनिर्भरता की नई खुशबू भी घोल दी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तैयार की है। इसमें लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसी प्राकृतिक सामग्रियां शामिल है। अपने अनोखे स्वाद और गुणों की वजह से इस चाय ने बहुत कम समय में लोगों के बीच खास पहचान बना ली। प्रयागराज के महाकुंभ और दिल्ली के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में इस हर्बल चाय को खूब सराहना मिली। विदेशों से आए लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई। साथियों, सबसे प्रेरक बात इसकी शुरुआत है। यह पूरा प्रयास सिर्फ 1 लाख रुपए से शुरू हुआ था। आज यह ब्रांड देश के बड़े संस्थानों तक पहुंच चुका है। ये पहल हमें बताती है कि जब स्थानीय ज्ञान, प्रकृति और महिलाओं का आत्मविश्वास साथ आते हैं तो एक छोटा सा प्रयास भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के माध्यम से लोग प्रकृति के प्रति अपना दायित्व निभा रहे हैं। जब समाज इस भावना से जुड़ता है तो बहुत सुंदर और प्रेरक उदाहरण सामने आते हैं। साथियों, अहमदाबाद में जन भागीदारी की अद्भुत शक्ति दिखाई दी है। भाड़ज क्षेत्र में 1 घंटे के भीतर 3.5 लाख से अधिक पौधे रोपे गए। इसमें 25,000 से अधिक लोग जुटे, स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट्स, स्वयंसेवक और आम नागरिक सभी ने इस अभियान में हिस्सा लिया। आने वाले वर्षों में यही पौधे एक घने शहरी वन का रूप लेंगे। इस प्रयास को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। साथियों, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जन शक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है। वहां एक ही दिन में 12 जुलाई को 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। यूपी का सांसद होने के नाते मेरे लिए ये भी विशेष गर्व की बात है। मेरे प्यारे देशवासियों, पेड़ केवल मनुष्यों के लिए नहीं होते, वे अनगिनत जीवों के घर भी होते हैं। गुजरात के गीर के जंगलों में करीब 60 वर्षों बाद इंडियन ग्रे हॉर्नबिल फिर से बसेरा बना रहा है। ये गीर में बरसों से हो रहे संरक्षण और पुनर्स्थापन के प्रयासों का परिणाम है। हॉर्नबिल को जंगलों का किसान कहा जाता है। ये फल खाते हैं और बीजों को दूर दूर तक पहुंचाते हैं। उन्हीं बीजों से जंगल में नए पेड़ उगते हैं। इस तरह एक पक्षी जंगल को फिर से हरा भरा बनाने में मदद करता है।
मैं आप सभी से कहूंगा, हम सभी अपने जीवन के किसी विशेष अवसर को प्रकृति से जरूर जोड़ें। एक पेड़ मां के नाम लगाएं। आज का लगाया एक छोटा सा पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली, स्वच्छ हवा और सुंदर भविष्य की विरासत बन सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी जानते हैं कि आज प्लास्टिक प्रदूषण पूरी दुनिया के पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा कई वर्षों तक प्रकृति को नुकसान पहुंचाता रहता है, इसलिए प्लास्टिक का सही निस्तारण बहुत जरूरी है। साथियों, बिहार के सीतामढ़ी में वेस्ट टू वेल्थ का शानदार उदाहरण सामने आया है। यहां कचरे की रिसाइकलिंग कर उससे आकर्षक बेंच बनाई जा रही है। एक बेंच तैयार होने में करीब 40 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक खप जाती है। यह मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक होने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी होती है। इसे सरकारी स्कूलों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाता है। इसके जरिए लोगों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता भी बढ़ रही है। इस प्रयास में स्थानीय इकाई के साथ ही जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। सीतामढ़ी का यह प्रयास हमें बताता है कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल आज केवल एक नारा नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। साथियों, आपको याद होगा पिछली बार मन की बात में मैंने गणेश उत्सव की बात की थी। मैंने आग्रह किया था कि हमें अपने देश की मिट्टी से ही बने गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जो पीओपी से बने गणेश जी होते हैं या विदेश से आई गणेश जी की प्रतिमा होती है, उसके बजाय हमें देश की मिट्टी से बने गणेश जी को घर में स्थापित करना चाहिए। इस विषय पर अनेक लोगों ने मुझे संदेश भेजा है और अपने विचार रखे हैं। लोगों ने बताया कि उन्होंने मेरे आग्रह को अपनाया है। उन्होंने स्थानीय मिट्टी से तैयार होने वाले गणेश जी को स्थापित करने का संकल्प लिया है। लोगों ने लिखा है कि मन की बात में पहले इस पर चर्चा हुई, इससे उन्हें सही वक्त पर सही कदम उठाने में मदद मिली। मैं एक बार फिर अपना आग्रह दोहराता हूं, इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका यह प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनकर आपको बहुत गर्व होगा। एक ऐसे व्यक्ति जो साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, दुनिया में जिनकी पहचान बन रही है, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं। अवसर मिलते ही वो अपनी मिट्टी का सम्मान करना नहीं भूलते। वो व्यक्ति हैं मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी। नाम उनका रोनाल्डो है लेकिन काम से वो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। आप जानना चाहेंगे कि उन्होंने आखिर किया क्या है। दरअसल उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। ऐसा लगता है कि विशाल समंदर में छोटे छोटे द्वीप तैर रहे हो। उसी प्रकार यूनिवर्स में ये यंग गैलेक्सीज भी एक विशाल संरचना का निर्माण करती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है। यह उपलब्धि हर भारतीय का गौरव बढ़ाने वाली है। इससे हमारे युवा साथियों को सीख मिलती है कि वे
अपनी परंपरा से जुड़े रहकर भी नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ये ऐसी जड़ें हैं जो सितारों की दुनिया को भी जगमगा सकती हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 7 अगस्त को हमारा देश नेशनल हैंडलूम डे मनाएगा। इस अवसर पर हम अपने बुनकर भाई बहनों के कौशल और उनकी सृजनशीलता का उत्सव मनाते हैं। हमारे ये साथी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें। साथियों, आज देश में जिस तरह हैंडलूम को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। पोचमपल्ली से पटना और कुथमपल्ली से कच्छ तक इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। आज ऐसे कई लोग और समूह हैं जो हैंडलूम की हमारी गौरवशाली परंपरा को नई ऊर्जा और पहचान दे रहे हैं। कोई पोचमपल्ली इकत की सुंदर परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, तो कोई महिला बुनकरों को जोड़कर वूल प्रोडक्ट्स बना रहा है। कुछ लोग केरलम की पारंपरिक कसाऊ कला को संरक्षित कर रहे हैं, इससे हमारी माताओं बहनों को रोजगार भी मिल रहा है। साथियों, एक और विषय जिसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा वह है खादी। हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8,000 करोड़ रुपये के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कितने तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो आप सोच में पड़ जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे यहां बहुत से वाद्य यंत्र और उनसे जुड़ी परंपराएं हैं। इसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है त्रिपुरा का चोंग प्रेंग। यह वहां की ट्राइबल कम्युनिटीज में काफी लोकप्रिय है। बांस से बने इस वाद्य यंत्र में 3 तार होते हैं। इससे निकली धुन बहुत मधुर होती है, जो सरोद से मिलती जुलती है। कुछ वजहों से युवाओं के बीच इसकी लोकप्रियता कम होने लगी थी। ऐसे में सूरज कुमार देव वर्मा जी ने इसे फिर से लोकप्रिय बनाने का संकल्प लिया। आज उनका प्रयास रंग ला रहा है। वे चोंग प्रेंग के साथ ही वहां के अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर भी परफॉर्म करते रहे। कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूं। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे।

साथियों, मुझे विश्वास है इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। मेरा आग्रह है कि आप भी अपने आसपास के पारंपरिक वाद्य यंत्र की जानकारी सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। आपकी यह कोशिश दूसरों को भी पारंपरिक भारतीय संगीत से जरूर जोड़ेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, कल 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। संयोग से इसी हफ्ते हम गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाएंगे। हमारे माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं। स्कूल के शिक्षक हमें अक्षर ज्ञान देते हैं। गुरु पूर्णिमा ऐसे सभी गुरुओं के प्रति कृतज्ञता जताने का अवसर है। मैं देश के सभी शिक्षकों और गुरुजनों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, कुछ ही सप्ताह बाद हम अपनी स्वतंत्रता का महापर्व भी मनाएंगे। 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है। अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है। साथियों, हर वर्ष 15 अगस्त से पहले आप मुझे बहुत से विचार और सुझाव भेजते हैं। इस वर्ष भी आप अपने विचार MyGov पर जरूर साझा कीजिए। मुझे आपके सुझावों का इंतजार है। साथियों, मन की बात में आज इतना ही। अगले महीने हम फिर मिलेंगे। देशवासियों की अनेक नई उपलब्धियां और प्रेरक प्रयासों के साथ, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: in Sachal in Guwahati, students gathered, and these students were from different political ideologies, in fact, and therefore it was seen that among the students was Kesham Mahanta's daughter, who was chanting slogans against the government. And that video went viral. However, Mr. Mahanta and his daughter were not available to media for any comments. They did not want to comment on it. But when the chief minister yesterday evening, after the cabinet meeting that took place, where he usually briefs the media after any cabinet meeting, he was asked by the journalist about this incident. He defended Mahanta. He said that you cannot troll Kesham Mahanta, because on social media, as soon as the video went viral, there were a lot of people who actually trolled Kesham Mahanta because of the kind of sloganeering that his daughter was seen, you know, involved in that video. But the chief minister clearly said that you cannot troll a parent for what an adult son or daughter does. He went on to give example on how there has been serious ideological opinion differences between...
1: She could differ in her ideology, is what the Chief Minister of Assam has said, while protecting and backing with his revenue minister. Thank you so much, Ratnadeep, for getting us those details. Very tragic news coming in of yet another young life that's been cut short, has been lost, raising very serious questions over civic safety in the Delhi NCR region. We're talking about a six-year-old, a boy who's died after drowning in a rainwater-filled pit. This was a 15-foot deep pit, allegedly left unguarded by the Greater Noida authorities. And the pit that was dug for boring work reportedly had no barricading, no warning signs whatsoever. Now the contractor has finally been arrested.
2: बात ये है कि कल शाम यानी 25/7/2026 को मैं शाम को घर पे पहुंचा हूं, जिस मैं चेयर पे आके बैठा हूं और 5-10 मिनट मैंने सिर्फ रेस्ट किया होगा, तब तक थोड़ा सा मुझे शोर सुनाई दिया, मेरी वाइफ हो गई और हमें ये लगा कुछ हुआ है, तो हम भागे भागे बाहर गए तो कुछ मेरी जो कॉलोनी की फ्रेंड्स है उनको एक खबर मिली कि यहाँ पे बच्चा गिरा है, उसमें से एक मेरे दोस्त हैं हरमीत, वो उस गड्ढे में मतलब कूदे हैं वहाँ पे बच्चे को, जब उन्हें मालूम कि इसमें बच्चा है और बच्चे को उन्होंने किसी तरह से ना, उनके ऊपर भी रिस्क आ गया था और बच्चे को उन्होंने किसी तरीके से बाहर निकाला और मैंने तुरंत बच्चे को गाड़ी में रखा और मैं विद इन ए फ्यू मिनट्स के अंदर मैं यथार्थ पहुँचा और यथार्थ पहुँच के डॉक्टर इमरजेंसी में उन्होंने किया भर्ती और उन्होंने जो कोशिश हो सकती थी उन्होंने की, पर अल्टीमेट बाद में बच्चा नहीं बचा और दुखी इस बात का है कि जिस गड्ढे में बच्चा गिरा है, काफ़ी बड़ा गड्ढा था, कोई बैरिकेडिंग थी, कुछ नहीं था ना, हमें कोई ऐसा एटलीस्ट कॉलोनी को भी इन्फॉर्मेशन नहीं है और बच्चा वहाँ घूम रहा है, कुछ भी न जाने क्या हुआ, फिसल गया, गिर गया, उस दलदल में कीचड़ में कोई बच्चा कैसे तैर पाता, वो निकलने की मशक्क़त में शायद मिल लगता और धंसता चला गया। मैं यही उम्मीद करूँगा कि जिनकी ये गलतियाँ हैं उनको एटलीस्ट सज़ा दी जाए ताकि आगे ऐसी गलतियाँ ना हों। आए दिन यहाँ पर हादसा हो रहा, मैं देख रहा हूँ, हम लोग जिस कॉलोनी में रहते बड़ी सेफ कॉलोनी है, लेकिन इसमें कॉलोनी में किसकी गलती माने, किसी गलती नहीं है, क्या बोलूँ मैं इस चीज़ के लिए, किसी बाहर या मतलब ठेकेदारों की गलतियाँ, अथॉरिटी की गलतियाँ, आके देखते नहीं काम कैसे हो रहा, कैसे नहीं हो रहा, जाने चली जा रही है, बताइए, एक 6 साल का बच्चा मेरा चला गया जिसने ज़िंदगी तक नहीं देखी पूरी।
1: Our heart goes out to the family of that six-year-old boy who's lost his life. He was pulled out by locals but declared dead at the hospital. Extremely tragic news coming out of Greater Noida. With that, we're slipping into a short break. Back with a whole lot more. Stay with us.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा,
7: सबका राजा आर्टियर मसाला।
8: The front lines of Kargil, the fury of Operation Sindoor,
9: so many attacks,
8: the chaos and cries of disaster zones, the fighter jet cockpits, and the world's most defining interviews.
9: It's incredible.
8: He has seen history break. Live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
9: Welcome to Left, Right, and Center.
8: Hard facts.
9: War struck country.
8: Hard questions.
9: In the Ukraine.
8: 30 years of trust.
10: In the Kargil area.
9: North Ukraine.
11: In France. In Italy.
9: At Srinagar.
11: Hi, Mr. France.
9: Vishnu Shom for NDTV.
8: Vishnu Shom. Only on NDTV.
12: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
13: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़े, vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।
14: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
15: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
16: दिस इजंट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज अबाउट हाउ यू मूव। दिस कार मेक्स नो सेंस, येट इट मेक्स एवरी सेंस।
17: व्हाट वी आर सिटिंग इनसाइड इज अ जोबी पावर्ड एयर टैक्सी।
16: Your friend said, ye le le. We said, maybe not. Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
18: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
19: Really?
18: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram, and trends that kept us with the program. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
20: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world.

0: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
0: द फ्रंट लाइन्स ऑफ कारगिल, द फ्यूरी ऑफ ऑपरेशन सिंधु,
4: सो मेनी अटैक्स,
0: द कैओस एंड क्राइज ऑफ डिजास्टर ज़ोन्स, द फाइटर जेट कॉकपिट्स and the world's most defining interviews.
4: It's incredible.
0: He has seen history break. Live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
5: Welcome to Left, Right and Center.
0: Hard facts.
5: War-struck country.
0: Hard questions.
5: In the Ukraine.
0: 30 years of trust.
6: In the Kargil area.
5: North Ukraine.
7: In France. In Italy.
5: At Srinagar.
7: I am Istikrat.
8: Vishnu Shom for NDTV.
0: Vishnu Shom. Only on NDTV.
9: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
10: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़े, vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।
0: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
11: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100.
12: दिस इजंट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज अबाउट हाउ यू मूव। दिस कार मेक्स नो
1: Good afternoon. You're watching NDTV 24/7. I'm Divya Vatva. We have a whole lot lined up for you, including Rahul Gandhi writing to the Home Minister over the brutality that was faced by the students at Jantar Mantar on the 20th of this month. We're going to get you details of what is written in that letter by Rahul Gandhi. First, the headlines. Rahul Gandhi writes to the Home Minister Amit Shah over the police action that was taken, asking who gave permission to the cops to use force and to use pellet guns. Those are the questions that are being raised by Rahul Gandhi. Politics speaks as Prahlad Joshi takes charge as the Education Minister. The opposition mocks the BJP, says one RSS minister is gone

0: कॉलोनी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, और बच्चा वहाँ घूम रहा है, कुछ भी न जाने क्या हुआ, फिसल गया, गिर गया, उस दलदल में, कीचड़ में कोई बच्चा कैसे तैर पाता, वो निकलने की मशक्क़त में शायद मिल होता और धंसता चला गया। मैं यही उम्मीद करूँगा कि जिनकी ये गलतियाँ हैं उनको एटलीस्ट सज़ा दी जाए, ताकि आगे ऐसी गलतियाँ ना हों। आए दिन यहाँ पे हादसा हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। हम लोग जिस कॉलोनी में रहते, बड़ी सेफ कॉलोनी है, लेकिन इसमें कॉलोनी में किसकी गलती माने, किसी गलती नहीं है। क्या बोलूँ मैं इस चीज़ के लिए, किसी बाहर या मतलब ठेकेदारों की गलतियाँ, अथॉरिटी की गलतियाँ, आके देखते नहीं काम कैसे हो रहा, कैसे नहीं हो रहा, जाने चले जा रही है। बताइए, एक 6 साल का बच्चा मेरा चला गया जिसने ज़िंदगी तक नहीं देखी पूरी।
1: Our heart goes out to the family of that little boy who lost his life because he fell inside this pit in Greater Noida. We're going to keep tracking that story. For now, we're slipping into a short break.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,
6: सबका राजा आर प्योर मसाला।
7: द फ्रंट लाइंस ऑफ कारगिल, द फ्यूरी ऑफ ऑपरेशन सिंधू,
8: सो मेनी अटैक्स,
7: द केओस एंड क्राइज ऑफ डिजास्टर ज़ोन्स, द फाइटर जेट कॉकपिट्स, and the world's most defining interviews.
8: It's incredible.
7: He has seen history break. Live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
8: Welcome to Left, Right and Center.
7: Hard facts.
8: War-struck country.
7: Hard questions.
8: In the Ukraine.
7: 30 years of trust.
9: In the Kargil area.
8: North Ukraine. In France. In Italy.
9: At Srinagar.
8: I am Iskandar.
9: Vishnu Shom for NDTV.
7: Vishnu Shom, only on NDTV.
10: ये युग तुम्हारा, ये रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
11: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़े, vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।
12: या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
13: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100.
14: दिस इजंट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज अबाउट हाउ यू मूव। दिस कार मेक्स नो सेंस।

0: On the 27th, Kargil Vijay Diwas, the nation is remembering its soldiers, their courage and their sacrifice, who secured India's victory in the war, the Kargil War that took place in 1999. The Defence Minister, Rajnath Singh, paid a floral tribute at the memorial, honouring the brave hearts who laid down their lives in the line of duty. We had Prime Minister Modi also saluting the heroes of Kargil, saying the nation bows to their unmatched courage and their valour that will continue to inspire generations. Across the country, tributes are pouring in as India marks one of its most defining military victories. Let's listen in to Rajnath Singh.
1: आज से ठीक 27 वर्ष पहले 1999 की जुलाई में हमारी मातृभूमि पर कायरतापूर्ण और कुटिल हमला हुआ था। पाकिस्तान ने अपनी सेना के घुसपैठियों के माध्यम से छल बल और धोखे का सहारा लेते हुए हमारी चोटियों पर कब्जा कर लिया था। ये वो चोटियां थीं जो सर्दियों में खाली रहती थीं और दुश्मन ने उसी संधिकाल का फायदा उठाया, लेकिन दुश्मन हमारी सेना के शौर्य और संकल्प की ऊंचाई को भांपने में चूक गया। हमारे जवानों ने सिर्फ पहाड़ की ऊंचाइयों को ही नहीं है बल्कि मानवीय सीमाओं की हर परिभाषा को भी पार करके दिखाया सारी दुनिया को। कारगिल युद्ध केवल भारत की सैन्य और कूटनीतिक विजय नहीं थी मित्रों, वह एक ऐसा क्षण था जब पूरी दुनिया ने भारतीय सैनिकों का अदम्य साहस देखा, उनका शौर्य देखा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है, क्या पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था। आज भारत इनोवेशन के रास्ते खोज रहा है तो पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन के नए रास्ते खोज रहा है। भारत शिप डिजाइन कर रहा है तो पाकिस्तान टेरर डिजाइन में लगा हुआ है। भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है तो पाकिस्तान टेरर इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है। भारत से भी कंडक्टर्स बना रहा है तो पाकिस्तान सुसाइड बॉम्बर्स तैयार कर रहा है। भारत स्पेस मिशंस के लिए जाना जा रहा है तो पाकिस्तान प्रॉक्सी मिशंस चला रहा है।
0: The defense minister is saying that the intent of infiltrators remains unchanged since the Kargil conflict, but the defense forces stand fully prepared to face any kind of challenges. With that, it's a wrap. News and updates will continue on the other side. Thank you for your time.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
4: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal, on Saturday.
3: The show that sets the prime time agenda.
4: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
3: Join me, Aisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
2: चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वो मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
5: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड। जॉइन मी गार्गी राउत एज आई ट्रैक ऑल द डेवलपमेंट्स एज दे ब्रेक लाइव फ्रॉम द एनडीटीवी न्यूज रूम वीकडेज एट 4 PM।
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा,
8: सबका राजा आर प्योर मसाला।
9: दिस इज द शो वेयर वी ब्रिंग यू ऑल द हॉट एंड हैपनिंग्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: वी आर ओवर जिमी।
5: हे लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
6: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैचमेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।
7: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
8: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
9: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal. What's happening? How?
8: The show that sets the prime time agenda.
9: We'll be deep diving into this topic to tell you what's happening.
8: Join me, Aisha Sehgal, on Prime 5 only on NDTV 24/7.
7: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
10: फ्रॉम द न्यूज रूम टू द स्टूडियो टू द थिक ऑफ पॉलिटिकल एक्शन।
11: नाउ वाचिंग एनडीटीवी 24/7। द होप इज दैट बियॉन्ड दिस इलेक्शन दिस विल बी वन ऑफ द मेजर इश्यूज विद मल्टीपल चैलेंजर्स इन द फ्रे। द टीएमसी आल्सो हैज डन अ बिट ऑफ बीजिंग। Remember, this is also a district that has been plagued by communal violence. Come to some

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो सुबह केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: वी आर ओवर जिमी।
5: हे लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
6: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैचमेकिंग सर्विस। मोदो एलीट।
7: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
8: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
9: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal, on Saturday.
8: The show that sets the prime time agenda.
9: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
8: Join me, Aisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
7: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
10: फ्रॉम द न्यूज रूम टू द स्टूडियो टू द थिक ऑफ पॉलिटिकल एक्शन,
4: वॉचिंग एनडीटीवी 24/7, द होप इज दैट बियॉन्ड दिस इलेक्शन दिस विल बी वन ऑफ द मेजर इश्यूज। विद मल्टीपल चैलेंजर्स इन द फ्रे, द टीएमसी ऑल्सो हैज डन अ बिट ऑफ बीजिंग। Remember, this is also a district that has been plagued by communal violence. Come to some of the sabhas that the BJP is also organizing, especially in the villages of West Bengal.
10: When stories have impact.
11: Padmasar Joshi, managing editor and prime time anchor.
10: Then news has influence. The buck stops here with Padmasar Joshi.
4: Your work is being watched by people. You think that you're making an impact in this time. I think that's really a huge validation, very rewarding, and I'm pretty certain that Team NDTV will go from strength to strength.
12: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
13: Really?
12: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram and trends that kept us with the program. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.

0: Dams were held and leak became public and it had to be acted upon. Soon, the government arrested those who had, you know, bought and sold the papers and so on. It was the responsibility of the government, one, to arrest them, put them to a judicial process, but equally it was the responsibility of the government to make sure the re-examination happens in time. Students get their result in time so that their one whole year's calendar does not get affected. And I think that bit was, together with everybody, the education minister, Dharmendra Pradhan, handled that. And after having completed that re-examination process, announcing the results so that...
1: All right, after the protests, it looks like that none other than the Prime Minister has cracked the whip. Prime Minister Narendra Modi has put out a new video which has announced major outreach on examination reforms. He has also pointed out that there is a constitution of a high-powered task force under the leadership of Nandan Nilekani. In this video, Prime Minister said that the task force will drive comprehensive reforms in the examination system, signalling the centre's push to restore trust, enhance transparency and strengthen the credibility of competitive exams in the country. This has been the moot issue during the recently concluded protests by Gen Z. Let's listen into what the Prime Minister said.
2: Friends, vidyarthiyon ke bhavishya ke liye Bharat sarkar lagatar anekvidh kadam utha rahi hai. Jin logon ne विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं. हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं. हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं. लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है. हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज़्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा. बहुत बहुत धन्यवाद. फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है. जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं. हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं. हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं. लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है. हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज़्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा. बहुत बहुत धन्यवाद.
1: My colleague Himanshu Shekhar joining us live from the national capital. Himanshu, give us more details.
3: Well, this is the first major announcement by Prime Minister of India on the big examination reform that he had promised to the country. The setting up of a task force, a high-power task force headed by Nandan Nilekani, is clearly the first step towards examination reforms in the country. And remember, Prime Minister Modi has categorically said that the government is committed to make the examination process more transparent, more credible. And in that direction, the task force will be making recommendations and submitting it before the government on the basis of which the next big step will be taken. So ahead of this big debate that

0: here, the scramblers are probably this much. And in this category, well, there are just a handful of characters, the Royal Enfield and the Triumph. But the YSD Scrambler has a different look and feel to it. Now, at around 2 lakh rupees egg showroom, this one undercuts its rivals by a distant margin. Also, the engine is not the biggest. The seat, well, your partner will not be all that happy. But having said that, going sideways and having fun over the weekend, well, this is a happy child.
1: And with that, it's time for us to say goodbye on this edition of NDTV Automate. Don't forget to follow us on our social media handles. And for the latest news, views and reviews, don't forget to log into ndtv.com/auto. Always remember, wear a seatbelt, follow speed limits, respect the drivers around you. This is your Automate Siddharth Sharma signing off. I'll see you guys in the next one.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।
5: We are over, Jimmy.
6: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
7: देश का टायर जेके टायर।
8: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूं? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।
9: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
10: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
11: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal, and Sandy Howard.
10: The show that sets the prime time agenda.
11: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
10: Join me, Aisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
9: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे। फ्रॉम द न्यूज रूम टू द स्टूडियो टू द थिक ऑफ पॉलिटिकल एक्शन,
5: नाउ वाचिंग एनडीटीवी 24/7, द होप इज दैट बियॉन्ड दिस इलेक्शन दिस विल बी वन ऑफ द मेजर इश्यूज। विद मल्टीपल चैलेंजर्स इन द फ्रे, द टीएमसी आल्सो हैज डन अ बिट ऑफ बीजिंग। Remember, this is also a district that has been plagued by communal violence. Come to some of the sabhas that the BJP is also organizing, especially in the villages of West Bengal.
9: When stories have impact,

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: देश का टायर जेके टायर।
1: We are over, Jimmy.
2: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
4: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी, आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज.
5: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter. The stories that shape your life.
6: Hello and welcome to Watch Prime 5 with me, Harisha Sehgal.
5: The show that sets the prime time agenda.
6: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
5: Join me, Harisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
4: Our pure Shahi Paneer Masala.

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: वी आर ओवर जिमी।
2: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
3: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
4: देश का टायर जेके टायर।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
0: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज.
6: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter.

0: forms.
1: All right, Akhil, thank you so much for getting us all those details. We'll of course keep coming back to you for more on that story. We'll continue tracking that and much more. For now, we are slipping into a very short break.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।
5: We are over, Jimmy.
6: Hey, life में scratches तो आएंगे। गाड़ी के scratches को तो Cosmo PPF संभाल लेगा। आप अपना देख लो।

0: front lines of Kargil. The fury of Operation Sindoor.
1: So many attacks.
0: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
1: It's incredible.
0: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
1: Welcome to Left, Right, and Center.
0: Hard facts.
2: War-struck country.
0: Hard questions.
1: In the Ukraine.
0: 30 years of trust.
3: In the Kargil area.
1: North Ukraine.
4: In France. In Italy.
1: At Srinagar.
4: I am France.
1: Vishnu Shom for NDTV.
0: Vishnu Shom. Only on NDTV.
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी एलीट मैट्रिमनी इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस फॉर द एलीट
6: व्हाट सीम्स सेटल्ड फॉर मी इज अनफिनिश्ड बिजनेस सो आई रिवाइंड आई पॉज आई रिफ्लेक्ट आई डिग अंटिल व्हाट्स बरीड स्टैंड्स अप To be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.

0: front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
1: So many attacks.
0: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
1: It's incredible.
0: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
1: Welcome to Left, Right and Center.
0: Hard facts.
2: War-struck country.
0: Hard questions.
1: In the Ukraine.
0: 30 years of trust.
3: In the Kargil area.
2: North Ukraine.
4: In France. In Italy.
2: At Srinagar.
4: In Istanbul.
1: Vishnu Shom for NDTV.
0: Vishnu Shom. Only on NDTV.
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूं 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी एलीट मैट्रिमोनी इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस मोदो एलीट
6: व्हाट सीम्स सेटल्ड फॉर मी इज अनफिनिश्ड बिजनेस सो आई रिवाइंड आई पॉज आई रिफ्लेक्ट आई डिग अंटिल व्हाट्स बरीड स्टैंड्स अप To be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.